दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत पल आता है जब सब कुछ नया नया और खुशनुमा लगने लगता है। जैसे नींद से जागती हुई बहार हमें याद दिलाती है कि हर सुबह अपने साथ नई उम्मीद लेकर आती है। इसलिए बीते हुए कल की उदासी को छोड़कर आज के खूबसूरत मौसम को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी में खुशियों को पहचानना भी एक हुनर है।

ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା, ସମୟ 5:41, 41 ମିନିଟ୍, 12 ସେକେଣ୍ଡ।